नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोह प्राप्त होती है, इतने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

गुरु सूगत के मुआफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नर्क कही न लेख है, नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसरत तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है,

कि नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नू सो, देही नू काड़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती है, तो बाबा फरीद जी नू पुछया, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, तो इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

0: महापुरुखां दी कईयां दी खुराक हर रोज इको ही हुंदी, इको ही हुंदी, उस कोई वरायटी नहीं हुंदी। तो पोशाक भी उन्हां दी सिंपल हुंदी, खुराक भी सिंपल हुंदी है, अते उन्हां दी देही जो है ओह बहुत किस्म दे चस्कियां दे, बहुत ही किस्म दी बदलाहट दी आदि नहीं रहिंदी। उन्होंने उसनू चुप करके बिठाल लिया होंदा, जिदा किसी नू चिड़क के बिठाल दो कि बस होर तेनू कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह उन्होंने अपनी देही नू साध लिया होंदा है। कहिंदे मैं अपने कन्ना च रूं दे लिया, इसकी गल ही नहीं सुनदा, इसकी गल नहीं सुनदा। तो नंबर एक अभ्यास है, देही दे लैवल ते बॉडी दे लैवल ते अभ्यास करो, तपस्या करो, इसनू साधो, इस दे विच डिसिप्लिन लियाओ, डिसिप्लिन लियाओ और इसनू अपने अंडर कंट्रोल लियाओ, इस उत्ते मास्टरी अचीव करो और इस तो जो काम लेना है वो लैण दी कोशिश करो। इसनू खलाई पलाई जान दे विच ही, सजाई तजाई जान दे विच ही ना रुझे रहो। बाणी पहला लैवल यह दसती है कि नाम जपण दे वास्ते यह देही इंस्ट्रूमेंट है, जे यही राइट शेप एंड कंडीशन दे विच नहीं है तुसी नाम नहीं जप सकते। इस करके देही नू सोधो, बाकी दे होर थोड़े जे सपोर्टिंग प्रमाण ताकि यह होर साडे दिलां च उतर जाए। बाबा जी आखदे हन
1: राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर।
0: स्पष्ट करता ना, राम रतन ओ राम जीवल ता पाना है, ता मिलना है जे पहला शरीर वालों ध्यान हटाओगे। जो पहले तजे शरीर, एक पासे शरीर दे रस हन स्वाद हन, एक पासे ओ राम रतन दा रस है। कहंदे हन ओ इसना नू छड़ोगे ताई ओ तुहानू प्राप्त होवेगा ना। राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर। इस तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता उच्च उठन की कोशिश करो। बाबा जी आखते हैं
1: धरत काया सदके विच दे करता बीयो।
0: धरती एक काया है, धरती ये जड़ी बॉडी है ना, काया है, देही है, ये है धरती। कहिंदे इस धरती नू जिन्नी देर तक नहीं सुधारिया, जिन्नी देर तक इसनू नहीं सुधारिया उतनी देर तक इस दे विच नाम दा बीज नहीं बीजा जा सकता। सो इस धरती नू सुधारन दा भाव है इसनू बहुत ही पवित्र रखिया जाए, साफ सुथरी रखिया जाए और इस धरती दे द्वारा इसनू साधना है कि इस दियां आदतां ना विगड़न, एक खान पीन दे विच ही मस्त ना रह जाए। बहुत कुछ असी गलत खाने हां, बहुत कुछ असी गलत पीने हां, उसनू मैं डिटेल च नहीं कहना चाहता, आप समझ आओगे कि जितनी देर तक तन ही असी इसनू नहीं सुधारिया, इसका खाना पीना नहीं सुधारिया उतनी देर तक नाम दा बीज नहीं बीज होएगा। सो नंबर एक है, और किस एक्सट्रीम तक इसनू सुधारना है वह प्रमाण देकर फिर मैं मन दे लैवल की गल आरंभ करांगा। हुण तुसी सुन के आप जी ने अंदाजा लगा लेना कि बाबा जी किस किस्म की देही सानू चाहते हैं कि असी इसनू डिवेलप करिए। कहते हैं कंगू की काया रत्ना की ललता, अगर वास तन सास अठ सत तीर्थ का मुख टिका, तित घट नाम निवास उत्मत्ती सलाहना सच नाम गुणतास। हुण इसके अर्थ कहिंदे कंगू की काया, ये जिहड़ी तुहाडी काया है ना, ये इतनी शुद्ध होवे, इतनी शुद्ध होवे जिस तरह के केसर हुंदा है, कंगू केसर नू आखदे पूजा पाठ आदि दे विच समग्री दे विच केसर वरत्या जांदा है, केसर नू शुद्ध मनदे हन। केसर जितनी शुद्ध एक काया होवे, वो काया केसर जितनी तां ही शुद्ध हो सकती है अगर इसकी शुद्धताई सुचम सफाई जो है रखी जाए। इतनी ए शुद्ध पवित्र होवे कि इस दे पास बैठे हैं इस दियां जिहड़ियां वाइब्रेशंस हैं वो बहुत प्यारियां बहुत शुद्ध हों। कई बंदियां दी काया ही ऐसी हुंदी है कि उन्हां दे नजदीक बैठ के तुसी डिस्टर्ब हो जाओ, नजदीक बैठ के डिस्टर्ब हो जाओगे, सिर्फ और कोई गलबात हो ना करन, पर जस्ट अफेक्ट ऑफ द बॉडी इज सो हैवी, क्योंकि बॉडी दे अंदर जो बहुत कुछ ऐसा है जो बढ़िया है वो चल रहा है। जेड़े अशुद्ध ख्याल हन, बुरे ख्याल हन, वो बॉडी नू भी अशुद्ध करते हैं, अते बॉडी तो उस तरह दी फिर बाहर जो वाइब्रेशंस निकल दिया हैं उनका कोई साडे वाल अखियां पार्ट ऑफ द बॉडी हैं, लेकिन इन्हां दे विच शुद्धता ही नहीं है। कोई साडे वाल स्टेयर करे तो असीं अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दिंदे हां, ये अखां क्योंकि शुद्ध नहीं हैं, इन्हां अखां च प्यार नहीं है, इन्हां अखां दे विच मिठास नहीं है, इन्हां दे विच दृष्टि दे विच विकार है, बुरियाई है, गंदगी है। तो ये अखां ही जदों असीं किसे वाल करदे हां दे मेक द अदर परसन फील वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि देही शुद्ध नहीं है। एक पासे बाणी च तरसदे हन कि गुरु बाबा जी साडे वल निगाह करो, साधु महापुरुषां नूं लोक कहिंदे हन साडे वल अखियां करो, साडे वल देखो, कॉन्ट्रास्ट देखो, किसे दा साडे वल देखना सानू बॉदरिंग हुंदा है, किसे दा साडे वल देखना सानू शांत कर दिंदा है। अखां ते ओही हन, देही ते ओही है, किसे दियां अखियां इतनियां शुद्ध हो चुकियां हन कि उन्हां दे विचों रब अते उस दियां वाइब्रेशंस मिलदियां हन, किसे दियां अखियां अजिहियां हन उन्हां दे विचों कुछ होर ही दिसदा है। देही नूं शुद्ध शुद्ध करो, पवित्र करो। कंगू की काया कहिंदे काया नूं केसर वर्गी शुद्ध कर दिओ। रत्ना की ललता नंबर दो, ललता आखदे हन इस जीव नूं जबान नूं, कहिंदे ये जिहड़ी जबान है इस दे विच्चों जिहड़े लफज निकलन बोल निकलन वो इस तरह होण जिस तरह रतन हीरे मोती जवाहरात निकल रहे होण। ये देही दी साधना है। हुण आप सारे ही अपने आप नूं सवाल कर लो कि जदों असीं बोलदे हां उदों की निकलदा है, की निकलदा है? रतन निकलते हैं, जवाहरात निकलते हैं, मोती निकलते हैं, यानी वचन ही मोतियां वर्गे होण, मोतियां वर्गे वचन होण, ज्यूल्स निकलन साडे शब्दां दे विच्चों, साडे वचनां दे विच्चों। कोई इंतजार करे कि एक कुछ बोलन, कई दफा असी फड़प होए पए होने पे बोली क्यों जा रहे हैं। इस करके बाबा जी आखदे बहुत घट बोलो, बहुत घट बोलो ताकि दूसरे ईगर होणगे तुहानूं कुछ सुनन दे लई। अते एक अभ्यास ये करो कि जदों कोई मन च थॉट आंदा है बोलन लई कि सवाल करदे हन कि थोड़ा बोलन दा अभ्यास किवें करिए, थोड़ा बोलन दा अभ्यास किवें करिए, उसका एक ढंग है कि जदों तुसीं बोलन लगे हो कुछ कहण लगे हो उदों मन च एक थॉट सोच लो पहला कि जे अगर मैं ना बोलना तो फिर की फर्क पै जाएगा, वट डिफरेंस इट विल मेक इफ आई डोंट से एनीथिंग। आप जी देखोगे कि तुहाडी 75% जो है बोलन की जरूरत जड़ी है वो घट जाएगी, नहीं रह जाएगी। देर इज नो नीड टू कीप ऑन टॉकिंग ऑल द टाइम। साइलेंस भी डिवेलप करनी चाहिए है, बॉडी साड़ी नू साइलेंस दी भी जरूरत है। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नहीं बोलना, ये भी साधना है देही दी। बहुत ज्यादा देखना भी वो भी गलती है, इस करके ये भी अभ्यास करना चाहिए है कि हर वेले कुछ ना कुछ देखते ही नहीं रहना चाहिए। जदों देखने की जरूरत है उदों देखो। हुण गुरुद्वारा साहब दे विच अखां बंद करके बैठने की आदत पानी चाहिए, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇੰਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਇੰਡ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਔਰ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਿਆਓ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹੀਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਕੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਰ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਿਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਸ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਵੇ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ, 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿੱਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਤੋਂ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿੱਕਾ ਤਿਤ ਘੱਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਸਕੇ। ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਿੰਗਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਗਿਵਿੰਗਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਗਿਵਿੰਗਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਇੰਡ ਦਾ। ਮਾਇੰਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार असवारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ, विटनेस करन वाले अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ, अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू, फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकेंड थॉट इज फॉलोड बाई। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार असवारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरता है उसनु देख सकते हैं, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरता है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरता है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरता है, असी अलग चेयर पे बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उसे उन्हें देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्हां नूं इनडिफरेंट होके, उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनैक्टेड यूअर सैल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है, अपने विचार असवारी कीजिए का मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो। तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है। अपने विचार असवारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनु देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
ਉਤਨਾ ਉਤਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਪਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਰ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

मर्यादा पूरी हो गई। हुण तक महाराज गुरु बने रहे ते हुण आप जी दी वारी सिख बनन दी सी। आप बड़ी निम्रता नाल बोले, हे अकाल पुरख दे खालसा जीओ, तुसा सारी दुनिया नू अमृत दी दात बख्शनी है। सब तो पहला दास नू भी अमृत दी दात बख्श के गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना लवो। भाई दया सिंह जी ने कहा, महाराज अमृत लेना है ता इस दा मुल भी देना पवेगा। असा सिर दे के अमृत प्राप्त कीता है, दसो आप इस बदले की दोगे। हजूर ने सिर चुका के कहा, प्यारे भाई दया सिंह जी, जे सिखा ने अमृत बदले सिर दिता है ता सिखा दा गुरु इस बदले सरबंस देवेगा।

गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके पंजा प्यारियां नूं छकाया, उपरंत आप छकिया अते खालसा पंथ दी सिरजना करके सानू एक वखरा ही स्वरूप दे दिता, ताके सिख लखां विच कल्ला खड़ा होया भी दूरों ही नजर आवे। इसे करके अज असी बड़े मान नाल एक कह रहे हां, साडा मुंह मुहांदरा वखरा है, साडा रूप वखरा, साडा रंग वखरा, किसे कौम दे नाल नहीं मेल खांदा, तुरिया आउंदा है साडा पर संग वखरा, साडी आत्मा दे लक्षण वखरे ने, साडे जिस्म दा हर एक अंग वखरा, साडी मौत जहान तो वखरी है, साडा जिंदगी जीवण दा ढंग वखरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दियां बीबियां दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो, बुलाओ फतेह ते आखो।

0: कोई नाम न जाने तेरा।
1: न तन जबान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदार, मैं होर थाओ नहीं दिते करो बिनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पाते। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बनियाई, प्रगट भई सगले जुगे अंतरे, गुरु नानक जी वडियाई।
2: आओ अपनिया बिस्तियां कागर करिए, दसना ते सतनाम श्री वाहे।

कबीर साहब अपने घर बैठे सन, किसी ने दरवाजा खड़काया, दरवाजा खोलिया, कौन आया? सिकंदर लोधी बादशाह, एदे सिपाही आए ने।

कबीर साहब जी उठ के तुरन लगे। कबीर साहब दे प्रेमिया ने कहा, कबीर साहब जे बादशाह ने बुलाया फिर खैर नहीं वर्तनी, तुसी जान तो इनकार कर दे। पर कबीर साहब ब्रह्म ज्ञानी सन, कहने के भाई ए हुक्म ए फुरमान सिकंदर लोधी दा नहीं, ए ता मेरे अकाल पुरख दा। जे सिकंदर लोधी दा फुरमान हुंदा ते मैं इनकार कर देंदा, पर जी अकाल पुरख दा फुरमान है ते मैं किवें इनकार करां। नाले एके आ ते नाले शिपाहियां दे नाल तो

कबीर साहब कह रहे ने मैं ता गुलाम हां मैं ता ओदे घर दा नौकर हां ए हुण ओदी मर्जी है।

सिकंदर लोधी दे दरबार विच पहुंचे। बादशाह सिंघासन ते बैठा है, दरबारी बैठे ने। नाशवान बादशाह समझ के कबीर साहब ने सलाम नहीं कीती। सिकंदर लोधी नूं होर क्रोध चढ़ गया। एक तां निंदका ने पहला कन्न भरे सन। बादशाह कहिंदा, कबीर तू मुसलमान हो के राम दा नाम जपना, फिर मैं बादशाह तू मैनू सलाम नहीं कीती। ते कबीर साहब फिर की कहंदे ने, बादशाह दे मस्तक वल तकिया ते हंकार दिसिया ते नाले इउं कहिया,

तू मेरे हरी दी समानता है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुगो अटाई,

छिपाई आली वापस नहीं पहुंची। कबीर साहब पहला ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआ ने बड़ी खुशी मनाई। सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया कीती। बादशाह नूं पता लगा है हाली कबीर मरिया नहीं। फिर सिपाही भेजे ने सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा ठीक है जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता। कबीर साहब नूं लकड़ां दे उत्ते बिठा के उत्ते भी लकड़ां चिणन लग पए ने। चार छफेरे नंगियां तलवारां दा पहरा है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोण लग पए ने पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे हुए अपनी श्रद्धालुओं की समझांदे ने।

आगे आप ही हवा। जे अकाल पुरख ने मेनू साड़ना है ते बचा कोई नहीं सकता। जे उन्ने मेरी रखिया करनी ते फिर मेनू कोई साड़ नहीं सकता।

पर ओ जड़ा हाथी ओ कबीर साहब नू लताड़दा नहीं। बड़ी कोशिश की थी पर ओ जड़ा हाथी अगले दोनों पैर नवा के कबीर साहब नू

0: काजी नू हाले भी समझ नहीं आई। ओ हाथी इना लोका नू एक सवाल करदा है,
1: क्या अपराध संत है की ना।
0: हाथी कहंदा है इस कबीर दा अपराध की है, इना ही के ए परमेश्वर दा नाम जपदा है, जेड़ा परमेश्वर दा नाम जपदा है उन

0: अच्छा हो ऐसी
1: मैंने अच्छे का विचार आप वरता ऐसी
0: तन कर मत की मन माहि।

तू बेअंत को विरला जाने को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरी बहुरंगी सब तेरे लिया तू बेअंत ब्रह्मा न जाने।

सरदार बुलाका सिंह ने नीवी पा ली अते सोचन लगा कि ठीक ही मैं कैरां वाली करतूत कर रहा हां। जे मैं हरमंदर साहब दी शान बदले जान दे दिंदा कि मस्से नाल लड़ मरन वास्ते होर भी सिख आउंदे, कि मैं अपनी जान नूं धर्म नालों ज्यादा प्यारी समझ के भज आया हां। ते फिर सिख ने आप ही जवाब दिता, नहीं, जे मैं उथे ही लड़ के मर जांदा ता हरमंदर साहब दी हो रही बेअदबी दी खबर इन्हां सिंघां नूं कौन पहुंचाउंदा। इन्नी गल सोच के सरदार बुलाका सिंह ने जथेदार नूं ताना हे

शिम्बरस्त वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणिया दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू लै जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ये बचन अपने पले बनांगे।